0: At Fresh FM, we strive to apply fairness, balance, good taste and decency and the right to privacy to all our programming. If you think there's something on air that hasn't met those guidelines, it is your right to make a formal complaint. This can be addressed to Fresh FM, 87 Utterfly Drive, Nelson, 7010. Complaints must be made to Fresh FM within 20 days of the broadcast. A privacy complaint can also be made directly to the Broadcasting Standards Authority via their website, bsa.govt.nz, or by calling 0800 366 996. This is Fresh FM.
1: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।
2: थैंक यू नेल्सन सिटी काउंसिल फॉर सपोर्टिंग फ्रेश एफएम।